असांजे वडील बि ईअं चाढ़ींदा जड़ी रीते असीं चाढ़ींदा न हलूं था न इन में ई परम पार थी माल जो हलियो अचे।

0: गिरोगे भी आएंगे मगर ये थे
1: अरे दे माथा कंडा म फगा हन मकर भी आपन फगा तो कंडा भी फगा
0: बकरी बकरी

0: funnier than
1: खाना है तो खाना है
0: मर
1: नपुर हाँ तो नहीं तो आज तो पंजा लेंगे खाने नहीं दी तो कोई मौरी लग नहीं अरे कसम

इतिहास प्रमाणे कच्छ जो करो है मालधारी वतन, वो खीड़ू है बई थी भी उद्योग रोगा जो जमीन में जिना है रही जा माल वेचार भेंगे किना

Well, you're not gonna win it? अरे दाला दरोड़ा, दाला दरोड़ा लटका, वो लटका नहीं जाएं, हो रही लटका नहीं, वो लटका नहीं, वो लटका

0: पेट पण धणी वेचारा मेहनत करी था हिन में धणी वटि असां वर ऐं मंझंदा आहिनि वरे में 40-50 हज़ार जी दवाई कई आहे हिन माल जी छा त माल जी ॾिसो त हीअ परिस्थिती
1: हनी लाखोरी काथे रही वई न लाखोरी हनी हाणे वीचार आहिनि वेसां पई खणी हिन घेटनि वॾा मनू में वेह कसल त कड़ो हज़र वातारे में निकिरो त हाणे
0: हीअ त अहिड़ी तपावा तूं हिंदी खे कड़ो कड़ो मथ ऑइल जो दवा जो अची वञे न खपे त हीअ त ठाहे न खपे त जावा जॾहिं साम्हूं न आई जी अतो रसी सघो तव्हां

आई पंड उठन जांगा का कथो आई जे घोरा ते ने मने अथो अथि करे वराय दे गा नहीं पण वरी पण ये लगे तो जे सफा वराय छडन दा तेन पो कोमटा एतरो मारो 1000 13000 महीने में कथा न करंदा पण वाला

कि असीं जॾहिं पण वञूं था न ओॾां असांखे मालदारी चवनि था मिठा, कि असीं जॾहिं पण वञूं था ओॾां असांखे मालदारी चवनि था मिठा। या असीं कच्छ मुल्क जा मौजीला मालदारी आहियूं मिठा, या असीं कच्छ मुल्क जा मौजीला मालदारी आहियूं मिठा।

0: वालेकुम सलाम। ठीक है। मैं घर नहीं रहा पर। हाँ बोल। हाँ नहीं बने टाइम जुड़े तो ना बने अलाई।
1: गाना
0: हाँ टाइम जुड़े ना तो जल जो कम मत हुई जी समझी न पुता की रे पूरा आज जो जानी तो ही
1: हाँ
0: तो पैर आज जो नहीं सुमो रही यार ना।
1: क्या आया क्या?
0: ठीक है ठीक बस क्या हाल है भान जी दुआ।
1: दो आला ने माइट रंज यार
0: बस क्या आयु क्या ना कथे रहो मजरा
1: ए जरा वाली भी कर दे
0: अगर शायरी कैडी बनानी तो के वफा जी को बेवफाई जी को साड़ी बनानी
1: बेवफाई शायरी
0: बेवफाई जी बस
1: आओ
0: तो के गायल करे भाई।
1: हो
0: हां
1: क्या तो धंधा करो करो जरा
0: धंधा उठा गाड़ी आला ही तो रहती मेरा कहीं आज जर तो सजे समझे नवर शिव बेच में आनो खाली धंधे ही पुरते हैं जरा उठा गाड़ी आला ही रहती मांडा बांडा को लोकनी जरे हैं
1: तो गाड़ी दादी गाड़ी में लगी तो गाड़ी दादी गाड़ी ले गाड़ी में लगी तो
0: ना रे गाड़ी ने झंझट के नहीं उठा गाड़ी बरोबर ने तेरे ती में हला पे ये गाड़ी में खटारा में का धक्का चले जा। इकने बड़े साधो ने सीधो ये धंधो बरोबर ना पण कोन टोला थे तो मा तारे दे पियो जे टुकरो बेड़ो तो जे
1: रेती भरो तो ना जड़ी ने कोई पेरा तो करूंगा ना
0: हां ने रेत नेम ने भरे कर गोठन खाली करनी
1: गोठम खाली करनी थोड़े सही तो बताओ दे
0: ए कते 100 रुपया कते 150 कते 120 ट्री हो ना। काहे मी 100 रुपया फैक्ट्री ने भाग लोकल में समझी कन वजन 100 के कड़ो सो ट्री 4 हो कते 50 वजन
1: नोरे में था हुआ
0: नेवरे कने बिठाओ को फरण कने हलण कने ना।
1: मैं YouTube पे तो खोल दी शायरी बनाई और गाटा गाटा खोल दी हलाई है YouTube पे शायरी तो जिन खोल के मां पसंद क्यों आन
0: हाँ
1: लाइक किया बोला
0: ठीक यार ये तो आभार
1: ये मैं आभार हूं ना इन की शायरी लेके दो तुम रंगा
0: ओ गड़ो है गो
1: ओ
0: आए हो जिंगा जी हमारी चैनल को लाइक करो और शेयर करो फॉलो करो ने चाहे सजो की करो ना बराबर तो जो फोटो डाला है फोटो डाला टाइम जड़े तो ना बना हला से।